0: ऐसे बाज़ ला, ता जिक से यूं रोया लो या गुंगे तेज़ में बने तो तंदे ती रिंदान दी आ हा को बा अंग काशिन युवे तिंजे जी गुरिम जी गुई ओर बा ता जिक किरांग की तंदे शे साब सुवे गुरिम ना लो लिया शे साब तिंजे की केजू रची आ कंजे जी लिया जुगु ना
1: लेसे ता तिंजे से ना चला सोसो के सुयू रिंदे की रिंदान दा में बेचा बेचा ला दिये की रिंदान हा को बने चेजी ता तिंजा शे घर सुने ले ता शे दी नंबर दी सुयू रिंग सुयू रिंग या रहा है रेशा यहाँ तभी युगों तांजे सुयू रिंग रोयां दी कंट्रेस शेदी नलो लोग तो नंजो सुयू रोयां दी नंबर कंट्रेस थोंडे मिशन बेल पार नंबर चोग तो ओ दी रेशा दी सोंजा नंजो थालो रारे थालो रां नंजो तंदा कबरानी दी चुंगा कलु नंजो की कलु कलु की शब्दों रां सोया की शेरां सोया की बाबजा रां सोया की दिस चोल कुकब चो दिन लाजिक बच गया ही अन्य कलू ही माचा शन नगना जो कि तभी तो सुजुरिंग आम बेटे केच बस ये ना जी यंगा चिशा दे रहे तादि मैंने माचा शन नगना जो बेटे तेरो वाला कलू दिने नगना जो कि जम्मे लिंबू यंचिंग लासोबो के दिन जी चोना जी मशु दिन का ना शब्द जब चुन संभाग तो नम्यू की शेष शब्द ना लोगे ना शुभ चिंबुता अंजे मेदु संभा नंबर साबो चिकन जी सो तो ओ अंदे शेजे थलों में कलू की शेज सो यूल ओ अंदे सर शा दिन के मा चिंजे ता तिंसा की शे सो कब जो ता ता शे सो बे केजु रो ती शे तंजो गांग लो केजु रो दी चा दे यूल लेंगे बिच चा शा ले सर शा ता नम्यू नाम जो की चोबु चोबु निम्बु जोम दू जान बा शे दान दू जाम ने दान ने जा की ता दान ने जा गांग लो शे चु यू बे शे दान चो मो रिं जी का ना मी गांग लो दान शिं बे शे दान को ना जी बिच चा चु गो ने दान दा गो यिं यां रोयां जिक्सो शेबे गिरिम नालो, कांगो चुन्जुजी नालो, रोयां ना सार्सो मुंगंदेस चेको तो सुदू जांबा, नें ने शे